वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय. सो दे वर ग्लोरिफाइंग भगवान कृष्ण, सिंगिंग हिज प्रेजेस, सिंगिंग हिज ग्लोरीज एज ए मेड ए परिक्रमा अराउंड माउंट गोवर्धन. वहां ब्रजवासियों की प्रीति करने के लिए श्री कृष्ण ने नया कौतुक एक और किया, अपना दूसरा रूप और प्रकट किया की है. देखो, व्हेन गोवर्धन महाराज हिमसेल्फ वुड हैव अपीयर इन दैट फॉर्म टू पार्टी. देखो, गिरिराज ने आज ऐसा प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और तुम्हारे ऊपर अनुग्रह किया. देखा अपना गिरिराज का कौतुक, कभी इंद्र ने भी इस प्रकार प्रकट होकर दर्शन दिया था और अपने हाथ से इस प्रकार भोजन किया था. यह गोवर्धन नाथ अपने पूजने वाले वालों पर सदा दया दृष्टि रखते हैं. भगवान कृष्ण ड्रॉ द अटेंशन ऑफ ऑल, लुक गोवर्धन हिमसेल्फ, ही हैज कम टू पार्टी. व्हेन यू डू पूजा टू इंद्र, इंद्र एवर कम एंड टेक, यू सी, यू एवर सी इंद्र कम एंड टू ईट? Yeah, you are doing puja to Govardhan Maharaj, and Govardhan Maharaj himself has come. He has appeared and he is partaking of all that you have offered. That type of thing you would never have seen when you do puja to Indradev. It is Srimad Bhagavate Mahapurani.

एक बार श्री वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। रिजॉइनिंग क्लोजिंग वंदना। हे प्रभु, वी से सिंसियर थैंक यू लॉर्ड फॉर हैविंग ब्लेस्ड अस विद दिस अपॉर्चुनिटी टू सिट इन डिवोशन टुनाइट, सी अस सेफली टू अवर होम्स, ग्रांट अस अ पीसफुल नाइट्स रेस्ट. May you bless us, Lord, that we will be able to assemble again tomorrow night in devotions to your lotus-like feet.

ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है परवाह है क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे धर भी उसे धरारे जिसकी रखवालिया रे करता साया तेरा हे देवा श्री गणेशा Whoever has your name in his heart has that fire in his eyes. He isn't worried about how his start is or what the end results are. The earth, sky, stars, they keep him out of troubles. Even fear is afraid of him, whose protector your shadow is, O Ganesha.

0: अच्छा रुको एक मिनट।
1: यस सर। ये किस लिए सर?
0: अरे आज रामनवमी है।
1: ओ थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
0: और सुनो ये सबको बांट देना।

श्रीशैलस्थलवासिनीं भगवतीं श्रीमातरं भावये ॐ श्रीदुर्गालक्ष्मी सरस्वतीभ्यो नमः।

भोले, जब कोई साथ नहीं आया तब तेरी मूरत ही रोशनी बनी, तेरा नाम ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है, बस मुझे अपनी भक्ति में डुबो लो प्रभु।

एक बार बोलो श्री आदि शक्ति नो दुर्गा माता की जय. डिवोटीज वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल प्रोग्राम ऑफ पूजा विधि. एज यू नो वी आर इन द नवरात्रि पीरियड एंड स्पेशल वर्शिप एंड डिवोशन इज डन टू दैट ऑफ द देवीज दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती इवन काली माता एज वेल एज मेनी मेनी ऑफ

कहा, ये देख जिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र को दया आ गई, और मुस्काकर जिस प्रकार बालक सर्प की छत्री को अखार डालता है, उसी प्रकार एक हाथ से गोवर्धन को उखार अपने हाथ पर धारण कर वज्र की रक्षा की, वही इंद्र के मद को दूर करने वाले गौओं के इंद्र भगवान वासुदेव हमारे ऊपर प्रसन्न हो। शुक्रदेव मुनि नाउ एक्सप्लेन्स टू राजा परीक्षित अबाउट व्हाट हैपेंड टू इंद्र। इंद्र हैविंग ऑब्जर्व्ड व्हाट कृष्ण भगवान डिड टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ ब्रज by lifting the mountain and so on with one hand while he was still a little boy, 7 years old, Indradev, all his pride, all the arrogance that he had was crushed, it was destroyed, it was removed from him. Indra is now free from that pride. He now understands about the greatness and glories of Bhagwan Sri Krishna. And so, Indradev, he is now glorifying Bhagwan Krishna.

वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। सुनो श्री सुखदेव मुनि इज गोइंग टू टेल अस व्हाट इंद्रदेव वाज इंस्पायर्ड टू डू। When we, after having doubts and after, you know, entertain certain confusions, etc. in our minds, and we listen and we get inspiration and we learn, how do we respond? What do we do after that? Do we go back into the doldrums or do we rise? What did Indra do? Let's hear what Sri Sukhdev Muni says. Sri Sukhdev ji bole ki he nripotam parikshit Bhagwan Sri Krishna Chandra ne Govardhan parvat utha kar jo braj ki raksha ki thi Devraj Indra ne jaakar sab baat kamaleoni Brahma ji ki ko sunai। तब ब्रह्मा जी बोले कि इंद्र तूने बड़ा अपराध किया, पहले मैं भी उनके गोप ग्वाल बछड़े इत्यादि हर कर अपनी बूढ़ी दाढ़ी पर धूल डाल चुका है। यह बात सुनकर

करने के कारण अत्यंत लज्जित हो इंद्र ने एकांत में आकर सूर्य के समान तेज वाली करी तक को भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों से लगाया। सो श्री सुखदेव मुनि सेइंग टू राजा परीक्षित, ओ राजा, व्हेन गोवर्धन वाज हेल्ड अप इन ब्रज एंड द पीपल ऑफ ब्रज वर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल द टोरेंशियल रेन्स एंड सो ऑन, सुरभि ही सेल्फ सेल्फ कॉल Not a name you have is what? Kamdhenu Surabhi, the celestial cow. She sought the feet of Bhagwan Krishna. She came from Goloka and she went to Bhagwan Krishna. And so Indradev also, he left Indraloka and he came to meet with Bhagwan Krishna. He says that Indra, yah mud bhi jata raha. All the mud, you know, the shame, the disrespect and so that Indra had shown to Bhagwan Krishna. All this has disappeared. And so he approached Bhagwan with all humility. This is Indradev. All humility he approaches Bhagwan Krishna. अमित तेजस्वी श्री कृष्ण चंद्र का प्रभाव जिस प्रकार कानों से श्रवण किया था उसी प्रकार नेत्रों से देखा और उस समय त्रिलोक की ईश्वर मई हूँ यह मत भी जाता रहा शान सर्वज्ञ है रजोगुण तमोगुण से रहित है और माया का जो कार्य अज्ञान से जीवों को लग रहा है वही संसार है यह तुम्हारे स्वरूप में नहीं है इंद्रदेव इज सेइंग टू भगवान कृष्ण प्रभु आई हैव विटनेस योर ग्रेटनेस योर ग्लोरीज ऑल द थिंग्स दैट यू हैव डन इनडीड यू हैव अनलिमिटेड एनर्जी एंड ऑल द प्राइड दैट आई हैड एज रूलर ऑफ द हेवंस That has been crushed. And he now clasps his hands in the dew and he's singing, saying to Bhagwan Krishna,